इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो इसमें तो सिर्फ डूबना ही डूबना है भाई। इसके अंदर अगर सोचो, इसके अंदर किनारा मिलेगा, किनारा नहीं मिलेगा।

0: चले स्वाद लगो ये लगवा चलो चलो
1: ना एक रावत है एक पिलिंगा कोने पे बेसवाद रहा
0: चलो चलो
2: वीडियो तो ऑलरेडी बना
0: सबके सबके लेनी है वीडियो कोई आदमी ना
1: यार
0: फिर मिले ना मिले
1: ये जो फालतू बोले
0: पल है समा में आ जाए ये तो थोड़ा सा बड़ा करवा ले करें हाँ हमें कैसे काम एक पार तो हमारा भी अस्थाई को बैसाखी को हो गया एक पार हमारा अस्थाई का हो गया फिर वो दौड़ बहुत भोग भोग करने पड़ेंगे हमें
3: One, two.

0: मतलब गजल क्यों लिखी जाती है, किस भाव से लिखी जाती है?
1: भाव से जो किसी से दिलचस्पी हो, तुम्हें किसी से मोहब्बत हो। लिखा कुछ नहीं नाना की याद में, दिल में है तो तुमने एक मेरे मोबाइल में और तस्वीर डाल दी, हर वक्त कोई देख रहे थे आप खुद थे। मैंने भूलने वाली थोड़ी की देखो, याद